0: इसका मतलब तुम यहाँ से निकल सकते हो?
1: सोनिया, ये तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है। मैं जानता हूँ कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली है।